न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

अक्सर इस दुनिया में सॉन्ग वन ओ लकी कबूतर कौन बे आउट को विद दिस दिस वन्स फ्रॉम 999 व्हिच वन डू यू वांट टू हियर 0792 57 0272 that's the WhatsApp number let's go

0: It's not Kiara Advani in your trio. It's not Kareena Kapoor Khan either. Thinking Colchester, you got it. Admeeting Hayes, Asi from Tanzania. Katika in Brighton, Shika from Bushy, right answer. Abu in Birmingham, you got it as well. Got a message here saying, can you please shout out my sister? It was her birthday a few days ago. Her name is Zara. Happy belated birthday, Zara. Hope you had a lovely day celebrating. And thanks for tuning into Sunrise, guys. On the way to London and a bit bored. Oh, I know those kind of journeys.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी?
3: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
4: शायद समझ नहीं आएगी, पर याद रह जाएगी.
5: Follow Juhi's inspiring journey of justice, courage and dreams in Juhi Mui every Monday to Friday, 7:30 PM, only on Colors TV.
1: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favourite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
0: Gold is trading at £104 per gram. All right, let's get another listen to this trio.
6: क्या नाम है आपका?
7: प्रिया.
6: और प्रिया जी आप करती क्या?
7: मैं राइटर हूँ. Ancient temples of India.
6: हाँ.
7: और यहाँ पे तो कितनी interesting stories हैं.
6: तुम हो ना यहाँ कुछ दिन के लिए?
7: हाँ हूँ, लेकिन किसी काम से आज सीतापुर जा रही हूँ. शाम 7 बजे की बस है.
8: जिस दिन हम मिले थे तुमने मुझे माला पहनाई थी और आज मैंने तुम्हें अंगूठी. अब बस मुझे तुम्हें माला पहनानी है और तुमने मुझे अंगूठी. फिर हो गया हमारा विवाह.
5: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

जुम्मनामाता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।